मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: ईशा सुवाने कुरंता
1: कोब्बला
0: दिवे ही बहुगा सुकुं कुरे वेया कुरता की कोबा
2: अलिफु सीनु नूनु ता शवियन
0: रंगलो फेमवेरुं एमे मैक को बुनाने की हिने
2: नाने फुलफिल लेवो
0: वारर रंगलो वेहे ता फेंडने गुमे बुनमा की कोबा
2: लिबे फुरसत के बेनुं हिफु माटु कोब्बला की कुरं कुरा सुवाले तमे
0: मी तैयार वानी दिवे ही फेमुं गेनस्ते शवियनी प्रोग्राम
2: शवियनी प्रोग्रामे दिवे ही बहुगा सुवालो अन्ना कोंगे ने को अन्ने नी
0: कों में हुकुरु आदि होनी हेरु दोहे गिरे अग्गड़ी तीरी हुगा
3: शावियन

0: Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right?
1: Stop it!
2: अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए।
0: मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ।
2: क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुंखरूंगा।
0: लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना शादी कर लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं।
2: मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा।

0: मुक्ति के पीछे भाग मत, अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे।
1: फिल्म के लीड रोल तक फेनिगेंदनी धनुषा कृति सेनन कलायलो प्रोडक्शन सा टी सीरीज गुलिगेंगुफेदि मे प्रोजेक्ट रश्मिकोंगे उलान कुरी दिहास तेविस वनाहरुगे जून महु रांजनाया दिहा हर फुर्मा दिमाको मेयाकु कुरीगे फिल्म के सपोर्टनुगे मेदुगा बोडु इंतिजारें उफेदि फिल्मंग वे शौगवेरकं इंतिहां उफुलुनु नतीजाय कव्वी सोनम कपूरा धनुष फेनिगेंदिया रांजना अनेक्कावेस ट्रेंड वांफेशुं रांजना हुआ में तेरे फदलवतं अलुन ट्रेंड वांफिशी।

नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।